और एक बहुत अच्छी खबर बॉलीवुड से आ रही है, एंड खबर ये है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हो आप, 71 नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है, जिसमें रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मतलब यू कैन इमेजिन इतना पावरफुल कपल भी हो सकता है। ये जो अवार्ड मिले हैं आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर को, ये तो डिजर्विंग करते हैं। एनिमल में रणबीर कपूर का जो भी रोल, जो भी किरदार उन्होंने निभाया है, वो बहुत आउट ऑफ द लिमिट है, आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इस कदर वायलेंस हो सकता है। एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट की नो डाउट एक्टिंग में, हमेशा कहता हूँ कि वर्सेटिलिटी के मामले में आलिया भट्ट का कोई मुकाबला ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। तो इन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि एक्टिंग के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। सोशल मीडिया पर फैंस इस ऐतिहासिक जीत को जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए इस अच्छी खबर के साथ एंजॉय करें।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM Monday to Sunday। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण निर्माणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। खेल जगत से आज शाम की एक बेहद रोमांचक खबर आ रही है। टेनिस के मैदान पर आज मॉन्ट्रियल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां कनाडियन ओपन के सेमीफाइनल मुकाबला में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ अंडरडॉग खिलाड़ी ने पहली बार इस मास्टर 1000 इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। मतलब जो खेल की दुनिया है, और खेल की दुनिया इट्स लाइक वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। सालों की मेहनत उसके बाद ये जो रिजल्ट्स निखर के आते हैं ये अलग ही लेवल के होते हैं। एंड खेल हमें ये सिखाता है कि खेलना ज़रूरी है, मैदान में टिके रहना ज़रूरी है। अगर आप मैदान में टिके हुए हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लड़े ही नहीं, मैदान में रुके ही नहीं, तो फिर आपने किया क्या है। तो मैदान में रुकना ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं।

का जो बादल का डेरा है और इस गंभीर काम माहौल में चलिए मैं आपको आज बिल्कुल ही नई और एक जज्बाती कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है विकास की, जो आज अपनी अलमारी साफ करते हुए अपनी पुराने कॉलेज की डायरी ढूंढ निकालता है। डायरी के पीले पन्ने जो रहते हैं, बहुत दिनों से डायरी रखी है इसलिए डायरी के पीले पन्ने, उनके बीच एक पुराना अधूरा खत मिलता है जो उसने बरसों पहले अपने एक खास फ्रेंड के लिए लिखा था, जिससे एक गलत फहमी की वजह से बातचीत बंद हो गई थी। खत पर लिखा था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पर डरता हूँ। विकास ने आज रोते हुए उस पुराने नंबर पर

0: रहे रेडियो मैराथन वाला नाइट्स एंड अभी जो डायरी की पन्नों वाली कहानी मैंने आपको सुनाई, दिल भारी हो गया ना। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठते हैं और वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। मतलब ऐसा है कि हमेशा हम कहते हैं कि यार मैं सॉरी कैसे कहूँ, मैं डर रहा हूँ। सामने वाला पर्सन भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने उसे सॉरी कहना चाहिए। बहुत बार तो ऐसे भी देखा गया है कि अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी अगर आपने सॉरी कहा है तो आपका रिश्ता अच्छा हो गया है, है ना। रिश्ता अच्छा होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस बोलना होता है एक सॉरी। अजीब शख्स है, नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूँ वो मुझसे गिला शिकवा तो करे। नाराजगी से बेहतर है कि बात की जाए, गिले शिकवे दूर किए जाए। मतलब एक सॉरी का इंतजार सामने वाला पर्सन भी एक्सपेक्ट करता है। सॉरी कहने से अगर रिश्ता बच सकता है तो सॉरी कह देना चाहिए, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

एंजॉय किया आपने गाना गाना वाकई में था काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड चलिए थोड़े फ्रेश लोकल वीकेंड अपडेट्स पर वापस आते हैं। आर्ट लवर्स के लिए एक बेहतरीन खबर है कि कैरी के कम्युनिटी सेंटर में अगले वीकेंड से फॉल थिएटर शुरू होने जा रहा है जिसकी टिकट्स आज ही लाइव हुई है। वहाँ लोकल कलाकार बेहतरीन ड्रामे और महफिलें सजाने वाले हैं। इसी कला और महफिल के नाम एक नया शेर अर्ज है, तुम आओ तो महफिल में रौनक बिखरे, तुम आओ तो महफिल में रौनक बिखरे, चिरागों से कह देना जरा अदब से जले। अपनी महफिलों की भी आप जो है अगर आप आर्ट के फैन हैं तो ये प्लान ज़रूर कर सकते हैं एंड अभी से आप शुरू कर सकते हैं ये प्लान को क्योंकि टिकट्स जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है एंड मौसम तो काफ़ी अच्छा है, संडे की वाइब है, मंडे का टेंशन नहीं है एंड बस इसी म्यूजिकल जर्नी में एंजॉय करना है अगला एक गाना एंड बने रहिएगा रेडियो।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपकी मूड को रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था कि बाहर आंधी तूफान का मौसम है और इस आंधी तूफान के मौसम में याद आती है तो बचपन की। बचपन में किस तरह से हम लोग नाव बनाते थे एंड साइकिलिंग तो कितना हम किया करते थे यार। और बारिश है और बारिश चल रही है और चलते चलते बारिश में डोरेमोन, शिनचैन, ये कार्टून चल रहा है, कैन यू इमेजिन। उसके साथ चाय आप पी रहे हो, गरम गरम पकौड़े भी खा रहे हो। सो इट्स लाइक वो दिन भी क्या दिन थे, कितना मज़ा आता था एंड कितनी सुकून भरी लाइफ थी ना। फ्यूचर का टेंशन था, बस टेंशन एक ही चीज़ का था कि मेरा होमवर्क कल कैसे कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट। एंड टेंशन थी मैथमेटिक्स की यार, है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हम सबको मोस्टली डर लगता था। ये छोटी छोटी टेंशन वो ज़माने में कितनी बड़ी टेंशन लगती थी, लेकिन आज जब जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं तो आपको पता ही है कैसे हालात हैं।

से रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स रात के लगभग 9:30 बजने वाले हैं और संडे का वीकेंड खत्म होने की कगार पर है। लेकिन एक जिम्मेदार आरजे होने के नाते आपको सुरक्षा की बात याद दिलाना मेरा फर्ज है। जैसे कि शो के शुरुआत में ही मैंने बताया था, बाहर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट एक्टिव है और तेज आंधी तूफान के कारण I-40 और हाईवे 540 पर विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। प्लीज अपनी गाड़ी की रफ्तार कम रखें और सामने वाले गाड़ी से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। कल मॉर्निंग मंडे में रश होने वाला है, इसलिए जल्दबाजी में कोई गलती मत कीजिए, सेफली घर पहुंचिए। एंड ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक डिस्टेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है टॉक्सिक लोगों के साथ गाड़ियों के बीच, एंड रफ्तार पर नियंत्रण होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका रफ्तार पर नियंत्रण है तो आप कुछ भी कर सकते हैं एंड आपकी गाड़ी को आसानी से

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

आपका साथ यूं ही बरकरार रहेगा। एंड मैं यही कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर से एंड गूगल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, एप्पल प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको मिलेगा हमारा ये रेडियो नायरा का ऐप। उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के बेहतरीन गाने, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। बस शर्त यह है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। आपका नेटवर्क अगर अच्छा है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। थैंक यू सो मच टू ऑल माय लिसनर, थैंक यू सो मच। आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार रेडियो नायरा को देते हैं, आपका प्यार यू ही बरकरार रहेगा इसकी उम्मीद रखता हूँ। एंड इस खूबसूरत मौसम में आप आपके फैमिली के साथ हो, डिनर एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

ए कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सुजा दूंगी मैं।

वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। अब वक्त है कि आप लोग आपके लव वंस के साथ है, आपके फैमिली मेंबर के साथ है। अगर आप आज भी आपके फैमिली के साथ एटलीस्ट वीकेंड पर एक साथ डिनर कर रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि पुराने ज़माने में हम मोस्टली सब लोग फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करते थे, लेकिन इस कंपटीशन के युग में ये थोड़ा सा नामुमकिन सा ही हो गया है कि सारे लोग घर पर बैठकर एक साथ डिनर करें। लेकिन वीकेंड में भी अगर हफ्ते में एक दिन आप एक साथ खाना खा रहे हो तो लकी हो आप, क्योंकि डिनर के दौरान जो डिस्कशन होता है, जो बातें होती है एक दूसरे के बारे में, उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये पता लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि फैमिली से बड़ी हीलिंग तो कोई है नहीं ऐसा मुझे लगता है। और बस आपकी मिडनाइट क्रेविंग को थोड़ा काबू में रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे को बहुत सारी कैलोरीज जो है आपने इंटेक कर ली है।

कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बस फेज लाइफ के जो है वो चेंज हो जाते हैं, टाइमिंग्स वही रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, बचपन में वही रहता था कि मॉर्निंग में उठो, तैयार हो जाओ, उसके बाद पढ़ने जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी सेम चीज़ हो रही है, लेकिन अब पैसे कमाने जाना है, तो टाइमिंग्स और सब चीज़ें सेम ही रहती है, बस जो फेज़ ऑफ लाइफ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लाइक रिलेट करें तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, पहले से ये चीज़ें हैं, यू नो लाइक। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि लाइफ का हर एक फेज़ एंजॉय करने वाला होता है, वो फेज़ को एंजॉय करना ही चाहिए। नहीं तो फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद सोचते हैं लोग कि यार हमने कॉलेज में तो कुछ किया ही नहीं, वैसा ना हो जाए। कॉलेज जैसा ही हर एक नया फेज़ हर एक की लाइफ में होता है, वो फेज़ जो है वो डेफिनेटली एंजॉय करना चाहिए। एंड फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नाइन पर।

यह निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

और जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी प्लेलिस्ट पीछे पीछे आ रही है। मतलब जैसे जैसे एज आगे जा रही है वैसे वैसे 90s के गाने और ज़्यादा मात्रा में सुनने का मन होता है, एंड 90s के लिए और ही ज़्यादा प्यार जो है वो निकल के आ रहा है। ऐसा मुझे लगता है, आपको भी क्या ऐसे लगता है? अगर लगता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन यार, ये 7 से 10 का टाइम मेरे प्यारे लिसनर के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा होगा, मंडे की तैयारी करनी है, मोटिवेट रहना है, मोटिवेशनल मंडे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से लेज़ी हो गए हो तो पूरा हफ्ता जो है वो लेज़ी बन के ही निकलने वाला है। तो स्टे मोटिवेटेड एंड काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है एंड सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है यार, बस गो विद फ्लो एंड ऑनेस्टली काम करना है, दैट्स इट। सब लोग करते हैं एंड सब लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वीक में काम करेंगे तो ही तो मजा आएगा, काम के बिना क्या है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना है। गुड नाइट।

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9
2: आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जॉन कॉर्डवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geet Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 टू 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek.

0: मेरी आंखों की चमकती रोशनी, समा फरमाए कि तेरी आंखें मेरी आंखों की चमकती रोशनी, आंख बंद हो तो अंधेरे में चला जाता हूं मैं। खातिनो हजरात, इंसान के चेहरे पर जो कुदरत ने आंखें बनाई हैं, आंखें दिल का खजाना निकाल कर सामने पेश कर देती हैं। प्यार की शुरुआत आंखों से शुरू होती है खातिनो हजरात, और ख़त्म होते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं या आंखें बंद हो जाती हैं। हकीकत है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वी आर योर होस्ट सफरोज ताज, जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एंड दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with the new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: फरमाइशें एक से एक बेहतर आई हैं और बेहतर से बेहतरीन होती जाती हैं, जैसे कि ये फरमाइश आपने समाप्त फरमाई। चरणजीत लाल जी एंड कंचन लाल जी की फरमाइश थी एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से, और अगली फरमाइश ऑफ कोर्स ज्योति करीर की मॉरिसविल से। समाप्त फरमाइए इस शेर के साथ, जो खेल में शामिल हैं फिक्र जीतने की है। समाप्त फरमाएं कि जो खेल में शामिल हैं फिक्र जीतने की है, और है देखने वालों को मजा जीत हार का।
3: यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

हार डालिए गले में हार के। जो हारता है उसके गले में हार डालना चाहिए, यानी हार के गले में। हार डालिए गले में हार के, हार ना होती तो जीत ना होती। अभी आपने समाज फरमाया आनंद बख्शी का कलाम, आर डी बर्मन की मौसीकी, अपना देशवास 1972 की फिल्म थी, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ों के साथ। ज्योति करीर मोहतरमा की फरमाइश के साथ मॉरिसविल से ये नगमा आपने समाज फरमाया। और उससे पहले वाला नगमा जो आपने समाज फरमाया मजरू सुल्तानपुरी का कलाम, मदन मोहन की मौसीकी चिराग, वाज मेड इन 1969। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मोहतरम जनाब चरणजीत लालियन, मोहतरमा कंजन लाल जी ने अपनी फरमाइश भेजी है एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से। और अब मोहतरमा फरीदा शेख की एक और बहुत खूबसूरत फरमाइश आई है मुकेश की बर्थडे के मौके पर। अगेन कुदरत के करिश्मे में वो है राजदारी। समाज फरमाइएगा कि कुदरत के करिश्मे में वो है राजदारी, सोचो तो सोचने में लग जाए उम्र सारी।

ताल तलैया, नदी से मिलके सागर से मिलवाए। देखिए सब ऐसा ही होता है कि ताल तलैया छोटी सी होती है, नदी से मिलती है, नदी जो है सागर में जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ से क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। ताल तलैया नदी से मिलके सागर से मिलवाए, और अगर सागर मिल जाए राम से, मोती कौन बनाए। इंदी वर का कलाम, रोशन की मौसीकी, अनोखी रात, अच्छी फिल्म थी 1968 की, नॉट बैड। मुकेश की आवाज में नाम समाज फरमाया। मोहतरमा फरीदा शेख साहबा की फरमाइश पर, आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, जैसे कि ये कुत्सिया कासिम की फरमाइश आई है कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स से। नूर जहां की आवाज, उनकी पसंदीदा आवाज है शाम का राग जो मुझे रुलाए, सुबह ही करके जाए। समाज फरमाए कि शाम का राग जो मुझे रुलाए, सुबह ही करके जाए, अलस सुबह जब सूरज आए, आंसू भर के जाए।

0: चोरी।
1: चोरनी जब चोर के चोरी करे तो क्या मिले। अरे चोरनी जब चोर के चोरी करे तो क्या मिले। एक दिल टूटा हुआ और जामे जम औंधा मिले। मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम, आडी वर्मन की मौसीकी। फिल्म का नाम दो चोर, 1972 की ये फिल्म है। किशोर कुमार की आवाज़ में मोहतरमा सारंधा पंडित साहिबा ने इसकी फरमाइश की किशोर कुमार की याद में, यानी के 97 ईयर्स के हो गए होते अगर किशोर कुमार जी जिंदा होते। वाह।
2: You are listening to Geet Bazaar Radio Naira ki Peshkash.
3: And Afroz ji, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's plus one if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from. And our friends at Tauriya Pratishtan would like us to announce that Rimpa Shiva, the renowned tabla nawaz, will be coming to the forum, which is run by Tauriya Pratishtan. The concert will be next weekend, August 16th. At the forum, which is located at 4000 Bearcat Way, Suite 100 in Morrisville. It's really basically right next door to the HSNC on Aviation Parkway. So more details can be found at the Tauriya Pratishtan website. So if you're looking for some good music featuring tabla solos, check it out. Again, this is coming up next Sunday, August 16th. See you there. And Usha Bajpai has asked us to let you know that Virangana, the Bold and the Fearless, is coming up on August 30th at Stewart Theatre at NC State.
4: Across 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland.
3: Virangana, the show, brings to life four powerful stories of women who are the true epitome of courage, resilience, and inner strength. Tickets are available at eventbrite.com. That's eventbrite.com.
1: Aur ab bari hai khatin o hazrat hamare imtihan ki, aur dekhna hai ki hum is imtihan mein pass hote hain ki nahi. Hamesha ki tarah main kehta hu ki mohtarma Purnima Gupta ji, ab to haar maan lijiye. देखते हैं, अच्छा इस नगमे के बाद शायद आप हार मान लें, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि आप कौन सा नगमा सुनना चाहती हैं। तो पहले आप अपनी आवाज में हमें उस नगमे के बारे में बताइए।
5: एक अच्छी सी गजल एक बार फिर सुना दो, एक बार फिर सुना दो।
1: आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, और सारी दुनिया के रंजो गम देके मुस्कुराने की बात करते हो।

इस जमाने में मुस्कुराती हो, अरे इस जमाने में मुस्कुराती हो, इतनी खुशियां कहां से लाती हो। ताबिश कानपुरी का कलाम था, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो उजलमी। आवाज थी मुन्नी बेगम की। इस वक्त तो मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा चैपल हिल से एक और फरमाइश भेजने जा रही हैं। हम सोने को आए हैं, हम देख के सपने जाएंगे। अरे हम सोने को आए हैं, हम देख के सपने जाएंगे। आंख खुलेगी एक दिन अपनी, घर हम अपने जाएंगे।

जिंदगी कुछ भी नहीं, अरे जिंदगी कुछ भी नहीं, अंधे बशर का ख्वाब है, बशर कहते इंसान को। जिंदगी कुछ भी नहीं, अंधे बशर का ख्वाब है, आँख खुल जाए तो फिर कुछ नजर आता नहीं। खातिन हज़रात, जावेद अख्तर का कलाम था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी और तेजाब फिल्म 1988 में बनी थी, जिसका ये नगमा था। नितिन मुकेश की आवाज़ और शब्बीर कुमार की आवाज़ और अलका याग्निक की आवाज़। मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा की फरमाइश चैपल हिल से। अगली फरमाइश मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा ने भेजी है, अपनी पसंद जो हमेशा सबकी पसंद होती है, वो अपनी पसंद ऐसी ही भेजती हैं। और साथ साथ मैं शेर सुनाने से पहले यही शेर मोहतरम जनाब स्वर्गीय डॉक्टर गंगाधर शर्मा यानी अंकल जी की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं चला जाऊँगा लेकिन जिंदगी रह जाएगी, और ऐसे भी कहा जा सकता है कि मैं चला जाऊँगा मेरी जिंदगी रह जाएगी और दोस्तों की महफिलों में जो कमी रह जाएगी।

खिलेंगे वफाओं के जब गुल चमन में, समा फरमाइएगा, ये भी शेर मेरा ही है। खिलेंगे वफाओं के जब गुल चमन में, तो हम बन के उतरेंगे खुशबू जहन में। मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम रोशन की मौसीकी, ममता वाजमेर 1966, मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा की फरमाइश पर। और अब मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की एक और कव्वाली, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही है, तो आइए साबरी ब्रदर्स को सुनते हैं। तुम्हारे दर पे भिखारी पड़े हैं बरसों से, अरे तुम्हारे दर पे भिखारी पड़े हैं बरसों से, हमारे प्यास का कूजा भरो अब अपनी नजरों से।

0: अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस नाम हाथ में आया है। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस नाम हाथ में आया है। और कौन है वो किस्मत के धनी जो राम हाथ में आया है। कलाम था मसरूर अनवर का, जफर खुर्शीद की मौसिकी थी, और जनाब वाला ये पाकिस्तानी फिल्मी कव्वाली थी 1965 की, जिसको बहुत मरतबा फिर बाद में पेश किया साबरी ब्रदर्स ने। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, इश्क हबीबी ये फिल्म का नाम था। 1965 की पाकिस्तानी फिल्म इश्क हबीबी की ये कव्वाली थी साबरी ब्रदर्स की आवाज़ों में, और मोहतरम जनाब चरणजीत रालियन, मोहतरमा कंचन लाल जी ने इसकी फरमाइश भेजी। और अब मैं हमेशा की तरह से आपके लिए एक स्पेशल शेर लिखता हूँ जो आपको सुनाता हूँ। समात फरमाएं कि बातें करेंगे दो दो जालिम खिजां से फिर। समात फरमाइए कि बातें करेंगे दो दो जालिम खिजां से फिर। आगे बढ़ो बहार का मौसम है मुंतजर।
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: Mike here at Auto Park Condon Carry, where we keep it simple. You get the Honda you want at a price you'll love, all with no games and no gimmicks. Get real value with every new Honda purchase, like no-cost oil changes, loaner cars, and free towing. It's how we've saved our customers thousands for over a decade. So forget the games and drive happy with a team that puts your needs first. Auto Park Condon Carry and AutoParkHonda.com. It's easier here.
3: Visit AutoParkHonda.com for details.
4: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

लचके दुपट्टे लहरिए हैं खूब जेबतन, लचके दुपट्टे लहरिए हैं खूब जेबतन, और हसरत जगा रहा है छन छन के ये बदन।

एक चांद घूमता है तारों को साथ लेकर, समझ फरमाएं। एक चांद घूमता है तारों को साथ लेकर, क्या खूब सजे तारे साड़ी के किनारों पर।

किसने कहा कि बांधिए पल्लू में मुरादें, अरे किसने कहा कि बांधिए पल्लू में मुरादें, पल्लू वजन के साथ बदन छोड़ रहा है।

पल्लू लटक रहा है चोली से यूं फिसल के। समझ फरमाएं कि पल्लू लटक रहा है चोली से यूं फिसल के, जैसे कि मोर कोई उतरा चमन से चल के।

0: चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे।
1: तेरे लिबास मलमल को कुछ हवा लगे, समाप्त फरमाइए। ये भी शैतानी से भरा हुआ ही शेर समझ लीजिए। तेरे लिबास मलमल को कुछ हवा लगे, क्या क्या है इसके पीछे कैसे पता लगे।
2: चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे,

चुनरी है कासगंज की, भारी है पांच मन की। समाज फरमाएं कि चुनरी है कासगंज की, भारी है पांच मन की, और मुल्तान का है लहंगा मेरे बदन से महंगा।

हमारी तरफ यानी कासगंज की तरफ जो ब्रज बोली जाती है उसमें महबूब को रसिया भी कहते हैं, और ये बहुत मशहूर गांव का या ये समझिए लोकगीत है जो फिल्म में आया आराम से, आगरे से घाघरा मंगा दे रसिया, मैं तो मेला देखन जाऊंगी, और सब तो देखें मेला, मेला देखे मेरो घाघरा मंगा दे रसिया, मैं तो मेला देखन जाऊंगी। और कहते हैं आगे, घाघरे के बीचों बीच ताज की तस्वीर हो, अरे घाघरे के बीचों बीच ताज की तस्वीर हो, और किनारे किनारे बहता जमुना जी का नीर हो, और जमुना जी में नैया हो और तुम जैसा खिवैया, मंगा दे रसिया मैं तो मेला देखने जाऊंगी। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

दूल्हे ने कर ली देख ये ससुराल हाथ में। अरे दूल्हे ने कर ली देख ये ससुराल हाथ में, एक हाथ में रुमाल तो एक माल हाथ में।

0: ना।
1: तरह तरह के रक्स जहां में मुझको प्यारा बिस्मिल रक्स, अरे तरह तरह के रक्स जहां में और मुझको प्यारा बिस्मिल रक्स, मरते मरते मकतूलों से करवाए जो कातिल रक्स।

0: वो बोली मैं म्यूजिक लूंगी ना लूं कोई लफंगी डांस। वो बोली मैं म्यूजिक लूंगी ना लूं कोई लफंगी डांस, और म्यूजिक में रोमांस की बातें लूंगी का ना लूंगी डांस। खातिनो हजरात, जब हर तरह के कपड़े पहनकर डांस हो सकता है या हो रहा है, तो क्यों ना लूंगी पहनकर भी डांस किया जाए। एज लॉन्ग एज इसमें भी दिल को मोहने की बातें हों, अदाएं हों, आर्ट हो, कलाकारियां हों। कैसे कैसे नगमे आपने भेजे हैं, आपने हमारा पूरे तौर से दिल मोह लिया है, इसमें कोई शक नहीं। वी आर योर होस्ट अफरोज़ता जान कॉलवेल एंड रवि चिरीकुड़ी। गीत बाजार आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा की पेशकश। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं। और अब हम चले, ये देखिए आपकी इजाज़त से, और चलते चलते राजकुमार सिन्हा की मेरठ से आई हुई फरमाइश सुनवाते हुए। और शर्त हमारी जाने की ये है कि इस शर्त पर चले हैं ना तुम हमको भूलना। अरे इस शर्त पर चले हैं ना तुम हमको भूलना, और जब भूल जाओ देखना एक फूल को मसल के। मोहब्बत जिंदाबाद।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3838.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

मजनी हो, सादिसी हो, आशिकी हो, मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी, मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे बाद भी हो।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: Across 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Veerangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
2: Not every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
3: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
5: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

विशाल ददलानी एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना ड्रामा क्वीन कंपोज्ड बाय विशाल शेखर एंड लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य एंड कुमार ओनली ऑन रेडियो सिटी।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूंस एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान नाइन जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट नाइन जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा

आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3838.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 Davies Drive, Morrisville. कॉल करें 9842540111.

0: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD4, 4090 AM, 99.9 FM SD3, 4 Telugu, Naira FM. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 26वीं इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences, and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program, and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।
1: रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं तौबा तौबा, संग कंपोज्ड एंड रिटन बाय करण औजला।

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD 4 for 90 AM and 99.9 FM HD 3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morris Ville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती, चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांदा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विले, कमिंग सून. राचा बांदा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: हाँ यार, एक नंबर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM एंड 99.9 FM LG3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड टॉक।
1: विलमर ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग डील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायडा, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक. कहा जा रहा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी. देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है. ढेर सारी मसालेदार खबरें, ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल एंड डॉट।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye ga nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, pata deji, pata local.

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सेंट ऑफ। वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Pakka Desi, Pakka Local.

0: Hey Ghana, आप एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM LG4, 49 AM and 99.9 FM LG34 Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूज एंड डॉग्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में आर्ट इन द पार्क सेलिब्रेट होने वाला है बहुत जल्दी। 70 जूड आर्टिस्ट लाइन द स्ट्रीट नेक्स्ट टू द पार्क इन डाउनटाउन बॉल्विंग रॉक सेलिंग आर्ट ऑफ द ऑल फैशन वेदर इट्स ज्वेलरी फर्नीचर लॉन ऑर्नामेंट पॉटरी टेक्सटाइल पेंटिंग और फंक्शनल आर्ट यू आर लुकिंग फॉर आर्ट इन द पार्क हैज इट। All of the art in the show is hand-selected by committee of local experts as fine as art and handcraft. The annual art in the park is seasonal event held once in a month. The remaining art is park gate air in August and in September up to October. Filhal ke liye jaiyega nahi, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pakka desi, pakka local.

माहौल गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप। या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉर्निंग।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3888.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
0: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: Okay, everybody.

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22-carat gold and 18-carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest-free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3838.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आपकी मंडे की ये शाम? एंड मंडे की शाम, मैंने जैसे कहा था कि वीकेंड ख़त्म होते ही मंडे को मोटिवेटेड रह के आपको जो है वो काम करना है। अगर आपने वैसे किया हो तो मंडे भी आपको वीकेंड की तरह लगने वाला है, क्योंकि अगर आप काम को अच्छे से एंजॉय करके करते हो तो डेफिनेटली काम काम नहीं लगता है, काम एक हॉबी की तरह लगता है और वैसे ही करना चाहिए। एंड अगर आप वो चीज़ के लिए वाकई में पैशनेट हो तो काम तो आसानी से हो ही जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड आपका स्ट्रेस ख़त्म करने का एंड आपके शाम को रिलैक्सिंग करने का जिम्मा जो है वो मैंने लेकर रखा है। तो एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत शाम का पहला ये गाना। बने रहिएगा मेरे साथ एंड सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3838.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
3: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना, वो मेरा अहम शक.

आपने एंजॉय किया ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। चलिए रुक करते हैं आज सोमवार 10 अगस्त 2026 की मुख्य और बड़ी स्थानीय खबरों की तरफ। पहली खबर हमारे रैली के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आ रही है। गो रैली ने डाउनटाउन में चलने वाली अपनी मशहूर आर लाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या में लगातार आ रही कमी और उबर, लिफ्ट और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बढ़ते चलन की वजह से ये फैसला लिया गया है। अब सिटी काउंसिल इस बात की जांच करेंगी कि क्या शहर को इस रूट की ज़रूरत है या नहीं है। आप भी मेरे साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि शहर को इस रूट की ज़रूरत है या नहीं। अगर हाँ है तो वो भी आप बता सकते हैं, ना है तो वो भी आप बता सकते हैं। हाँ है तो क्यों है, ये आपको बस एक्सप्लेन करके थोड़ा बताना है। सुनते हैं।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

आपने एंजॉय किया ये गाना। गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। डरहम काउंटी के शेरिफ ने घोषणा की है कि 2026 की पहली 6 माह में टॉप 8 अपराधियों के मामलों में कमी आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वसंत ऋतु में अचानक बड़े अपराधों के बाद शेरिफ कार्यालय की त्वरित जांच और गिरफ्तारियों के कारण चोरी और गाड़ियों के लॉक तोड़ने जैसी घटनाओं में गिरावट देखी गई है। एंड ये गिरावट देखना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि ऑलरेडी देखी जा रही है। एंड अगली खबर ये है कि वेक काउंटी के एक अदालत के जज ने रैली शहर के नाइट लाइफ परमिट को कैंसिल कर दिया है। लोकल प्रशासन अब इस बात पर विचार कर रहा है कि इन रूल्स को और परमिटों को नए दिशा निर्देशों के साथ किस प्रकार वापस से लागू किया जाए। आपको क्या लगता है, नाइट लाइफ होना तो एक ज़रूरी चीज़ भी है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से अगर जनता कर रही है तो इसे लागू कर देना चाहिए। एंजॉय करते हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो मैराबन निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। अगली न्यूज़ ये है कि वेस्टर्न वेक में तेज़ी से बढ़ रहे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए BRT रूट तैयार किया जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 60 फीट लंबी ऑरेंज बसें डाउनटाउन रैली से सीधे RTP को जोड़ेगी, लेकिन घनी आबादी वाले मॉरिसविल शहर के भीतर कोई लाइक मेन स्टॉप न होने के कारण ये रूट वहाँ के निवासियों को सीधे लाभ नहीं पहुंचाएगा। ये एब्सोल्युटली राइट, लाइक कैसे पहुंचाएगा, है ना, जिसे जो लोकल काउंसिल है वो चिंता में है। एक उनका कहना है कि मॉरिसविल को भी कनेक्ट करने का कुछ रूट बनना चाहिए। आगे क्या होने वाला है, कैसा रूट रहने वाला है, डेफिनेटली मैं आप मेरे सभी प्यारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। तब तक के लिए ये सुहानी शाम में ये गाना तो बनता है, एंजॉय करते हैं अगला ही गाना एंड बने रहिएगा निर्वाणा नाइट्स पर।

एंजॉय किया ये गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, साथ से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपकी मूड को रिफ्रेश। रैली धर्म के पास जॉनसन काउंटी की 12U लिटिल लीग सॉफ्ट बॉल टीम ने इतिहास रच दिया है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में केंटकी को 2-0 से हरा कर लिटिल लीग सॉफ्ट बॉल वर्ल्ड सीरीज LLWS का नेशनल चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर दिया है। मतलब मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, उनके मेंटर एंड कोच सबके लिए ये बहुत ही मतलब हैप्पी कर देने वाली न्यूज़ है। एंड बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है तो ये इतिहास में गोल्डन वर्ड्स में इनकी जीत जो है वो डेफिनेटली दर्ज की जाएंगी। एंड आपकी शाम कैसे चल रही है? मंडे को ज़्यादा काम तो नहीं किया? अगर किया भी है तो वक्त हो चुका है निर्वाणा नाइट्स पर चिल करने का। बने रहिएगा।